हर सच्चे सृजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा, हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबान। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हरि अनेक अनेक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी, तप तपै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़ें बो समर्थ शास्त्र जी, कर करे आखट कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडियवर ना कोई। तू जोग जोगे को सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुद आपे पावे सोई वरतै जी, तू आपे करें सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हूं पाई रहाओ। सब तेरी तू सब ने त्याया, जिसनो कृपा करें तन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुझे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन्ना ने गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरडे पहिले निवासा, पानी पावक तने किया। पंकज मोह पग नहीं चल, हमदे खाते डूबी अले। मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गले आ रहा। ना हो जति सती ने पड़िया, मूर्ख मुकदा जन्म पया। प्राणवत नानक तिन की शरणा, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरन जाम लाग पवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा। जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कभी बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की।

सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हांते मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा। राख लियो मोय राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देवदैं जशन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जबुद करख करा कर तारा, परजा तर तब दे आपारा। जबया करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन सृट सब थारे, आपे अपने बूझ उचारे। तुम सब हीते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि नीले नादे सांब। ताका मोड़ उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कृपा हने न मानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न पेव। आप अपने बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती। तुमरा लखा ना जाय पसारा, के बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल लकट नहीं आए हैं। रच्छा होए ताए सब काला, दुष्ट वरिष्ठ ट्रै तत्काला। कृपा दृढ़ तन जाए ने हरे हो, ताके ताप तन कमो हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे बारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दार दुष्ट दुख ते रहा। खड़क इतमें शरण तिहारी, आप हां दिले उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लियो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुराण, अनेक कहे माते क न माने। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहुभेद कहे हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तो ए बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै,

बिहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुनै करन नाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद। जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फलै। जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सहज समावै।

ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव। नानक ज्यों पावक का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रकाश। जैसे तारे ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मने अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभाव करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का तनी श्लोक। उर तारे जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टैल संत सांग हेत। करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बाशना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोह ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिशन की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत होवै निह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बांचै, केवल भगत कीर्तन संगराचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानको बैसनो परम गातु पावे। भगौती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगौती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिशन प्रीत। हर

राम नाम आत्मै सोधै। राम नाम सारस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जून ना आवै। वेद पुराण सिमृत बूझै मूल सूखम मैं जानै स्थूल। चौं वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वर्णा मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर तारै पाश प्रेत मुगद पाथर को तारै। सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत किते न पाईऐ धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर करम। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगा प्रवान। अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुगत सो कहावे। तैसा हरक तैसा उसोग सदा आनंद तहां नहीं बेयोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अवमान तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत नानको पुरख कहिए जीवन मुगत। पार ब्रह्म के सगले ठाउ जित जित घर राखै तैसा तिन नाउ। आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फुन होग। पसर्यो आप हो अनंत रंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार। नानक रचना प्रवरची बहु विद अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार बिहारी। कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिशुर होते। कई कोट आत्म ध्यान तारें कई कोट कब का विचारें। कई कोट नवतन नाम त्यावें नानक करते का अंत न पावें। कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपन कठोर कई कोट भेगा तुमने कोर। कई कोट पर दर्ब को हिरें कई कोट पर दुख न करें। कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे। जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससियर सूर निखतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर। सगल समगरी अपने सुतारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त। कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे। कई कोट जख्या किनर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मिरगाच। सब ते नेरै सबू ते दूर नानका बलिवत रहा भरपूर। कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट बौ जोनी फिरै। कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काले थक पाहे।
ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ, ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ, ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਐ ਸਤ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ। ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ

ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जोत की नो विस्तार, कई बार पसरे उपसार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभते होए ब्रह्माए समात, तांका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तुम प्रकाश, कई कोट तात के बेते, सदा निहारे एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, मर पए सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्मरा सुख सह समावै, अपने जन को सा सा समारे, नान कोई परमेश्वर के प्यारे। श्लोक, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहार ने, जल थल महियल सोए। अष्टपदी, करन करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई होग, खिन मैं था पुथा पणहारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे धार अतर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब मैं रहा समाई, प्रभावै मानु गत पावै, प्रभावै ता पाथर तरावै, प्रभावै बिन सास ते राखै, प्रभावै ता हर गुण पाखै, प्रभावै ता पत ते उधारै, आप करै आपन बिचारै, दुहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहु मानुख ते क्या होए आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इस कै हाथ होए ता सब किश ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत बिखिया मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै।

संत का दुख न त्रिटै कोई, जैसा भावै तैसा कोई होए। पया करत न मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसकी ओकर निहार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्राव की उस्त करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास। सब कुछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल अब कर निहार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करत सापन नाम दे, बड़पागी नानक जन से। सलोक तजो सियानप सुर जनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पाओ जाए। अष्टपदी मानो की टेक वृथी सब जान, देवन कहो एक है भगवान। जिसका दिया रहे अगाए, बौर न तृष्णा लागे आए। मारे राख है एको आप, मानो कह कुछ ना ही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नम्र कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोई। उस तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेक ठाकुर का रंग, सर संग बिनसै सब संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगा नानक कूजल मथा। बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करें विचार, से तनवंत गनी संसार। मंतन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछान ए तुत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिने निरंजन जानया। गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। सात संग हर हर जस कहत, सर्ब रोग त्यो हर जन रहत। यंदन कीर्तन केवल बख्यान, कृष्त मैं सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जमकी पासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागे दुख। जिस को हर प्रमन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै। जिस पर भी अपना कृपा करे, सो सेव को किसते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदर सोदर सोदर सीजया, गुर प्रसाद तत् सब बूझया। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। ना किस जन्मे ना किस मरे, अपन चलित आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मै, आप अनक चुक त्राय था। प्यो था आप अविनाशी, ना ही किश खंड। धारण धार रहे हो ब्रह्मंड, अलाख्य भे पुरख प्रताप। आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुशोभा वन। सगल संसार उदर तनमंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण। प्रभ के सेवक दुख बिसारण, आपे मेल लय कृपाल। गुर का शब्द जा भय निहाल, उनकी सेवा सोई लाग। जिसनो कृपा करें बड़ पागै, नाम जप पावें विश्राम। नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान, जो किश करे सो प्रभ के रंग। सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाए हुए सो होए। करने हर पछाणै सोए, प्रभ का किया जनमीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माए समाए। सुख निदानी उन्हों बन।

है भे सच नानक होसी भे सच। अष्टपदी चरण सत सत पर संहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत भेखण हार, नाम सत सत ध्यावन हार, आप सत सत सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझणहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, भय ते निर्भउ होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहि समाना, बस्त माहि ले बस्त गडाई, ता को भिन्न न कह ना जाई, बूझै बूझणहार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक सास सास मारे, अपने जन का पर्दा ढक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को देह बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रख है, ताकि गत में कोई ना लख है, प्रभु के सेवक को कू न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंच ते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दंद प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका शासन काढ़ त्याब, ताको राख देकर हाथ, मानस जतन करत भान, तिसके कर्तव्य बिरथे जात, मारे न राख है अवर न कोई, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करें रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख बड़ानी, बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत ए मन तन तृपी है, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शबर नहीं दृटाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सोकर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप ताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जे बादन रात, प्रभ अपने जन की नी दात, करे भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने सो रह समाए, करहें भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह समाए, जो हुआ होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कै एक न जानो, आठ पहर प्रभ बसै हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे, मन मेरे तिन की ओटले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पुछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर सब पाप मिटावै, अवर सियाणप सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सदु पैरा। श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिस का नाओ, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुर मत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुरु सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै, सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी हे, सतगुरु सिख का हलत पलत सवार है, नानक सतगुरु सिख को जी नाल सुमार है, गुर कै करे सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कारज रास, सेवा करत हुए निकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जे साब करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिस्वे गुर का मन मान है, सो सेवक परमेश्वर की गत जाना है, सो सत गुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कश भरम, सहस सियाण पलया न जाई है, नानक कैसा गुर पट भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगा गवे, सुनकर बचन करना घाने, मन संतोख आत्म पतिया ने, पूरा गुर आख्यो जाका मंत्र अमृत, दृढ़ पेखा होए संत,
ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਸਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਜੇ ਬਾਏ ਕੁਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ, ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਾਮੀਆਂ, ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਨਿਰਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦੈ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਜਪਣੇ, ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਦੁਖ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਏ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ, ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਕਹਿ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਤਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓ ਹੀ, ਕਲਾ ਤਾਰ ਦਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਉਤਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਈ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਸਾਰ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ

नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवधान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो धूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधारु नानक मांगे नाम प्रभ सारु। प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सो भार भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ सार कै संग। परे शरण्यान सब त्याग अंतर प्रगाश अन्न दिन लिव लाग। बड़पागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनशा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होए उदयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पहया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच्छ पुन्नी श्रद्धा सा पूरी रब रहया सरसंग हजूरी। जिसका सतन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे घाल न पान। सो क्यों बिसरै जे किया जान। सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया। सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगन मैं रखै गुर प्रसाद को बिरला लख। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ जन्म जन्म का टूटा गंढ। गुरपुरै तत यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एकाम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अब्रह नाम जपावो। भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन होसी सार। सर्व कल्याण सुख निरनाम बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का हो वतनाश नानक नाम जपो गुणतास। सुबजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तने अंतर यही सुहाओ। नेत्रों पेख दर सुख होए मन बिकसै सार चरण धोए। भगत जिना कह मंतन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे करमाया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभक्षण दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल। आदि पुरख कारण करतार भक्त जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए प्रनीत भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्वै कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमुख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत। भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक परगा। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन।

अष्टपदी आप कथे आप सुनहारु आपे एक आप विस्थारु जंत भावे ता सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते पिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कबीता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सब ता कह हाथ दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस रख है तिस कोई ना मारे सो मुआ जिस मनो बिसार है तिस ताज अवर कहाँ को जाए सब सरेक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सभी ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो भी आप प्रतपाल जीन बो भांत जो जो रचियो सो तिसे त्यांत जिस पावे तस लय मिलाए भगत करें हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करनहार नानक इक जानिया जन लागा हर एक कै नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बनयाई हुक्म बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर भय निरवैर यंदन पूजें गुर के पैर ये लोक सुखिए पर लोक सोहिले नानक हर प्रभे अपै मेले सत्संग मिल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का ऐसो आओ आठ पैर प्रपेखु नेरा मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हालत पर दुएले सवार राम नाम अंतर उरतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे ते साच परीखिया मन तन नाम जपो ले बुलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभै खेव तुम्हारी एक टेक रखो मन माहे नानक भौर न आवै जाहे तिस ते दूर कहाँ को जाए उबरै राखण हार त्याए निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख नाम जपत मन होवर सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिरी ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सहोत निहाल ताकै निकट नयावत काल अमर भय अमर

0: अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगाश। अष्टपदी संत संग यंत्र प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा बीठा, सगल समग्री एक स्कट माहयन करंग नाना दृष्टा है। नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत्ता नाद, कह ना जाइए चर्च बिस्माद। तिन देखिया जे साब दिखाए, नानक ते जन सो जी पाए, सो अंतर सो बार अनंत, घट घट व्यापर या भगवंत, धर्म माही आकाश पयाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल। बण तिन परबत है पार ब्रह्म, जैसी आ गया तैसा कर्म पौन, पानी बैसंतर माही चार, कुंटू दह दिशे समाहे, तिस्ते पिन नहीं को ठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक, बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले, सर्व कला कर खेले, खेल मोल न पाइया गुण अमोल। सर्व जोत मैं जाकी जोत, धार रहो स्वामी ओत पोत, गुरप्रसाद भरम का नाश, नानक तिन मैं ए विसास।
1: संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संजना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने सब बचन, सर्वव्यापी राम सवरन, जिन जाता तिसकी रैत। सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुमन, करन करावन हार प्रभ जानै। अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन दे सामोही, आप सत किया सब सत, ते प्रभ ते सली उत्पात। ते पावे ता करे विस्तार, ते पावे ता एकंकार, अनकला लखी ना जाए, जिस पावे ते लहे मलाए। कावन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपा भरपूर, अंतरगत साब जनाए, ना ते जन आब जाए। सरभूत अवतारा, सरब नैन आपेखणहारा, सब समगरी जा काता नहाए, आपन जासा पी सुना। आमण जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सबके मतलब तो रहे, जो कहना सुभापे कहे। आगे आवे आगे जाए, नान जा पावे तां लहे समाए, इस त्यो सो नाहीं बुरा, उरे कहो कि नहीं किस करा। आप भला कर तू ता नेकी, अपने जाने आपे जाने, अपने जी की आपे जाने, अपने जी की आप साच तारी सब साच, ओत बोत आपन संगराज। ताकि कद में कहीं ना जाए, दूसर होए ता सो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नान के जान। जो जान है ते सदा सुख होए, आ मिलाए ले प्रा सोए, ओ तनवंत कलवंत पतवंत, जी मन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन धन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया, जन अवन कहे सुहाओ, जन कहे संग चितावे नाओ। आप मूत मूत करे संसार, नानक ते जन कहो सदा नमस्कार। सलो पूरा प्रभ अराध्या, पूरा जा का नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेस, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सा सा सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चेंदा। आस अनत त्यागो तरंग, सिरना की धूर मन मांगो, आप छोड़ बेनती करो, सास अगन सागर तारो। हर धन के परले हो भंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार, खेम खुश सहज आनंद, सास परमानंद। नरक निवार उदारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चेच धुन नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दो पंजन पूरन कृपाल, सिम सिम नाम बारंबार, नानक जी का आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन। अमलीक लारे सुंद कुमार, तो आधार आप तरे लोग कह निस्तार, सफल जिन सफलता का संग, हो जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्दा नाद वाजे, सुन सुने कान दे कर, प्रभ गाजे पट इकबाल, मात के माथे, नानक उदरे तिन के साथ है। शरण जहो सु सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मलाए, मिट गए बैर पए सबरेन, अमर नाम साथ संग लैन। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕੀ ਸੇਵਾਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਗਾਰਤੇ ਰਹਤੇ ਰਾਮ ਨਾ ਸੁਰਨ ਨਾ ਕਹਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਪ੍ਰਵਤਾਰੀ ਨਾਨ ਨਿਭੀ ਗੇ ਬਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਸੰਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਸੁਖਮਣੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਹ ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਪੁਰ ਸਭ ਲੋਏ ਸਾਭ ਦੇ ਉਜ ਪਾਏ ਸਥਾਨ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਹਰ ਤਨਖਾਰ ਜਲ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤੇ ਸਿੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸੇਠ ਉਤਮ ਸ਼ਨਾਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਭ ਕੇ ਮਸਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰਤਾ ਕਾ ਬੇਤਾ ਸਮਦਸ਼ਟੀ ਦਿਸ਼ਟੇਤਾ ਇਹ ਫਲ ਤੇ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਪਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨ ਏ ਨਦਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਤੁਨ ਬਾਣੀ

साध संग मिट संत कृपा ते जम ते छुट जाके मस्त कर्म प्रभ पाए साध सन नानक ते आए जिस मन बसै।

नाम मन महेश मनि दुख रोग बिन सप परम साध नाम निर्मलता के करम सब ते ऊच ताकि सुब बणी नानक ए गुण नाम सुखमणि सब ते ऊच ताकि सुब बणी नानक ए गुण नाम सुखमणि सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब ते ऊच ताकि सुबह बने नानक गुणनाम सुखमणि सुखमणि साहब का पाठ आप जी ने श्रवण किया। सतगुरु कृपा करे तुहाडा गाव्या सुनिया थाए पवे और जिथे आपां संगत रूप विच अज सुखमणि साहब का पाठ किया उत्थे वैसे सिख नूं हुक्म है कि सिख ने खुद आप बाणी पढ़नी है। जिन्नी भी बाणी इहदा प्रयोजन है सिख वास्ते कि जे पाठ जां आप करे चाहे खंड पाठ है चाहे सहज पाठ है जे आप पाठ नहीं करता तो पाठी ला के सुने ते जे दोवां विचों कुछ नहीं तो खिमा करना साढ़े पजारियां ने साढ़े वर्गियां ने तुहाडे कोल 50-50 खंड पाठ रखा के ना तो खिमा करना साढ़े कोल मत्थे टका ले आ 50 पाठी तो मूँह बन के बैठे होणगे पर 5 जने सुनन वाले नहीं हैगे। सो बड़ा वड्डा दुखांत है साडा। इहदा कारण इक्को ही है कि आपां खुद बाणी नहीं पढ़ते। जिहड़े पढ़ते उहनां दे चरणां ते मेरी नमस्कार। मैं नहीं कहता नहीं पढ़ते, पढ़ते ने लोग पाठ करते ने सहज पाठ भी करते हैं पर जेडे नहीं पढ़ते उन्होंने भावें आप किन्ने भी सुखमणि साहब के पाठ आप करिए ना तो खिमा करना समझ नहीं पैनी। हूँ अखीरली पंक्ति है सब ते ऊच ताकि सोभा बनी नानके गुण सुखमणि जी का सिरलेख ऑफ द बाणी जिमें आनंद साहब है सुखमणि साहब आ अलाणिया ने रामकली साध है घोड़िया ने यह बड़िया बाणिया जिन्हों के नाम ने सरलेख ने। इतने कली सुखमणि की गल नहीं करी क्योंकि सुखमणि साढ़े अंदर यह कि सुखा की मणि। वैसे मैं उदाहरण कई बार देना हूं एक मिनट लेना मैं थोड़ा ता कि बच्चे बैठे ने बहुत खुशी की गल है कि यूथ इज आलसो सिटिंग ओवर हीयर बट प्रॉब्लम साड़ी यह है कि साड़ा बहुता इंट्रस्ट नहीं है बाणी दे विच क्योंकि मैं देखदा आमी फिर मैं बहुत लंबे सिर तो इतने हाँ कि आप इनवाइटड सिख हाँ कदी असी गुरु वास्ते नहीं आए भी आप गुरु की आसा की वार का कीर्तन सुनना जहाँ ही कीर्तन सुनना। असी सद्दे पत्र नाल बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं जे सद्दा पत्र तो गुरुद्वारे नहीं तो लागू नहीं लंघ जाना। कहने तो भाव है कि यह सानू पाया गया। मैं एक उदाहरण देना हूं घर में मनी प्लांट लगे होंगे ना कई तो जे किसी का मनी प्लांट बड़ा प्रफुल्लित हो सोहना वड्डा हरा हो आ बंदा पता की कहता या तुहाडे घर मनी बड़ी आ कहिंदे ना। पर मैं इहो कहिंदा ना भी मनी प्लांट नूं पाणी दे के चंगी खुराक दे के ते उहदे लागे बह के मत्थे टेकी जो काम ना करियो ते जिद्दण माया आ जो मैनूं फड़ लिओ आखो सतर उह माया ते तुहाडी किरत ना तुहाडे काम ना। जे मनी प्लांट लाउंदी होवे ते नौकरियां करन दी लोड़ की फिर मनी प्लांट ला के काम सर जावे। इह वहिम भरम भुलेखा सब ते ऊच ताकि सोभा बनी नानक एक सब तो उची उस प्राणी की सोभा है जेड़ा गुरु की बाणी ना जुड़ जाता है जेड़ा बाणी ना जुड़ जाता जिन्ना अज कीता ना। वैसे जे पुछिए तो मैं पता बहुत घट ने किया कई ने तो जपजी साहब भी नहीं किया क्योंकि हाल नितनेम सिख ने करना। अज यो ही लै जाओ कि आप एक नितनेम शुरू करिए हर एक घर के जपजी साहब हो हर एक घर खेमा करना जिथे बाणी होएगी ना उथे बरकत ही बरकत रहमत ही रहमत। प्रैक्टिकल करके वेखो प्रैक्टिकल जीवन च लियाओ हर एक बच्चे 14-15 साल तक जबानी जपजी साहब का पाठ सिखा दिए
ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਫੋਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਧੋਣਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧਾਏ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਪੈਰ ਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ।

गुरु की संगत जी, आओ सारे ही मन बिरतियां एकाग्र करिए, क्योंकि साढ़े को 24-24 घंटे काम करने वास्ते, संसार काम करने वास्ते समय है, पर गुरु दे विच, गुरु साहिब जी दी हजूरी अंदर जदों बैठते हाँ, असी बैठते तो जरूर हाँ, पर मन फिर साडा अपने कामां काजां दे विच, संसार दे विच हुंदा है। कोशिश करनी है कि मन नूं वी इत्थे लिआउणा है, क्योंकि गुरु रामदास जी ने मन नूं बड़े प्यार नाल आवाज मारी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, इस निज घर विच आउण वास्ते किया है, आओ सारे। बड़ा ही सौखा शब्द है, रहरा साहब दे विच आप जी इहनूं सरवण करदे हो, आओ सारे नाल गायन करना जतन करिओ।

अनेक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें आपन बिरद रखाबो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा,